एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, संघ संवत 1948, श्रावण माह की तिथि 21, तदनुसार 12 अगस्त ईस्वी सन 2026 आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा। सुप्रभात, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल

0: मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. The Lok Sabha had passed the bill yesterday. Rajya Sabha is also likely to take up the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing today. In the Lok Sabha, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 will be tabled for consideration and passing. Yesterday, the proceedings of both the Houses of Parliament were once again disrupted following opposition uproar on various issues. Lok Sabha passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 and the Rajya Sabha passed the Tribunals Reforms Bill 2026. India has reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable

पिता के वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए श्री राम को वन गमन करना था, किंतु सीता को वन जीवन के कष्ट भोगने देना राजा दशरथ

को स्वीकार्य न था। अतः उन्होंने मंत्री सुमंत्र से ये कहा था, यदि दो चार दिनों में वन में घूम फिरकर राम वापस लौटने को तैयार न भी हों तो वो सीता को अवश्य लौटा लाएं। श्री राम ने कई प्रकार से सीता को अयोध्या वापस लौट जाने की सीख दी, किंतु सीता का एक ही उत्तर था, हे करुणामय और परम ज्ञानी, आप विचार कर देखें, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। मंत्री सुमंत्र से उन्होंने कहा, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितैषी हैं, आपकी बात का खंडन करना मुझे शोभा नहीं देता, किंतु अत्यंत आर्त होकर मैं आपके सम्मुख आई हूँ। पति के चरण कमलों के अभाव में जगत के सभी नाते रिश्ते मेरे लिए व्यर्थ हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। पहली रचना हरिओम शरण की। हरिओम शरण के स्वर में सुनते हैं ये पहली रचना।

और अब ये अगली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं, आरती मुखर्जी, स्वागता लक्ष्मी के स्वर में।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर दिलराज कौर की गाई ये भक्ति गीत। हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले के स्वर में ये भक्ति गीत।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पे सुबह के 6:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर बाद 6:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत में गजल मृणाली अखौरी के स्वर में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा के साथ हम होंगे आपके साथ सुबह के 7:00। समाचार प्रभात में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार के लिए हम चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र सुबह के 8:30 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक में आज आप सुनेंगे बांग्ला बाउल गीत। सुबह 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में जल संरक्षण में चर्चा होगी, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का

योगदान पे जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम के साथ आज मैं रहूंगी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन आप सुनेंगे सुबह के 9:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे सुबह के 10:00। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे NCERT। पूर्वाहन के 10:30 पर हम आपको शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। हमारी शाम की सभा आरंभ होगी शाम के 5:02 पर कार्यक्रम विवरण के साथ। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका के गाए चंद फिल्मी नगमे। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, मुर्गी पालन कैसे करें इस पर चर्चा होगी। साथ ही इस कार्यक्रम में आप लोकगीतों का आनंद भी लेंगे। शाम 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 6:02 पर आप सुनेंगे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनोरमा। 6:55 पर हम आपको शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में जहां से आप शाम 7:00 सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। विधानसभा समीक्षा आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से शाम के 7:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे शाम के 7:20 पर। संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे रात्रि के 8:00। फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे रात्रि के 8:15 पर। समाचार संध्या में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि के 8:45 पर। रात्रि 9:15 पर हम आपको पुनः शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल का रिकॉर्डिंग का मुख्य अंश। रात्रि 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और सभा समापन की घोषणा हम करेंगे रात्रि के 11:10 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम मृणाली अखौरी के स्वर में चंद गजल सुनवा रहे हैं।

हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा।

न रहो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों के साथ कार्यक्रम जोहार चायबासा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा, नमस्कार। सबसे पहले सुनते हैं देशभक्ति गीत। इस कार्यक्रम में महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर हैं, गुलशन बाबरिया के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी के संगीत है और फिल्म का नाम है उपकार।

0: मुकेश और शारदा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म अराउंड द वर्ल्ड से। और अब अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम जोहार चायवासा में। अवतार इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म मंथन का गीत प्रीति सागर और साथियों के स्वर में। हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार आशा भोसले और साथियों के स्वर में, जिसे हमने लिया है फिल्म कस्मे वादे से।

अपनापन। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर के स्वर में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। इस कार्यक्रम का ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर उदित नारायण के स्वर में। मजरों के बोल है, संगीत है आर डी बर्मन के, फिल्म का नाम है बड़े दिल वाले।

बड़े दिल वाले इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, उदित नारायण के स्वर में मजरों के बोल थे। संगीत दिया था डी बर्मन ने। और अब अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ है। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म तेरे मेरे सपने का गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर के स्वर में। अगला गीत सुनने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम जोहार चायवासा में। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में फिल्म पड़ोसन का गीत।

फिल्म पड़ोसन के इस गीत के साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम जोहार चाईबासा अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस कार्यक्रम से अब राधा को दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात के तहत क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शिवजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते।

0: 26 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरज़ू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
3: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सोल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
1: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
4: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण

0: और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
4: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बेछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांति मोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं, झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जाँच में सामने आई कुछ नई बातें। लोक सत्य की पहली सुर्खी है, पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है, संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है, टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा, हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है, कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan to flag off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in a short while. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic West Bengal today. And in Commonwealth Fencing Championship, Karan Singh, Sharjin Shantimol and Tanishka Khatri clinch gold medals in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 is to be tabled for consideration and passing. More from our correspondent.
7: The Kerala Alteration of Name Bill seeks to change the name of State of Kerala to Keralam in the first schedule of the Constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. The resolution stated that while the state is known as Keralam in Malayalam, its name is recorded as Kerala in the first schedule of the Constitution. Meanwhile, the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2026 aims to amend the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. Dilnashi Arzu, Akashwani News, Delhi.
6: Prime Minister Narendra Modi will release the autobiography of former President Ramnath Kovind, titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles, in New Delhi today. The Prime Minister will also address a gathering on the occasion. The autobiography offers a deeply personal account of former President Ramnath Kovind's life journey, tracing his experiences, struggles, and achievements from his early years to his distinguished public life and eventual service as the 14th President of India. The book provides insights into the values, experiences, and circumstances that shaped his journey and public service. Various programs are being organized across the country under Har Ghar Tiranga campaign. Vice President C.P. Radhakrishnan will flag off the Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in New Delhi in a short while. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi urged citizens to celebrate the Independence Day with honor, pride and glory and take a pledge for a developed India. In a video message posted on Instagram, Mr. Modi urged people to hoist the national flag at every home as part of the Har Ghar Tiranga, Ghar Ghar Tiranga, Har Man Tiranga campaign. Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya flagged off a Har Ghar Tiranga cycle yatra at Major Dhyan Chand Stadium this morning. Mr. Mandaviya led the rally with My Bharat volunteers of Delhi University. Talking to media, Mr. Mandaviya said that more than 1,000 My Bharat volunteers have conveyed the message of fitness to the nation through the rally. He highlighted the benefits of cycling for any nation to become a developed nation.
8: In Delhi, more than 1,000 My Bharat volunteers conveyed the message of fitness through the Har Ghar Tiranga cycling yatra. If a nation aspires to become a developed nation, it is essential for its citizens to remain healthy. Cycling promotes fitness and helps combat pollution. Cycling is also a solution to traffic congestion.
9: Cycling traffic ka samadhan bhi hai.
6: In Jammu and Kashmir, a mega Tiranga Yatra was held today on Boulevard Road along the banks of the famous Dal Lake in Srinagar. Lieutenant Governor Manoj Sinha led the rally, in which thousands of students, government employees, security personnel and people from different sections of society participated. The participants carried the tricolour and sang patriotic songs along the route. The J&K police band performed the national anthem and other patriotic songs during the rally. The JPSC-JSSC aspirants protest in Jharkhand has entered its 19th day, with students continuing their hunger strike and demanding action over the alleged examination irregularities. Tension rose after a late-night visit by the district administration to the protest site in Ranchi. Here is a report.
2: The students held a silent march last evening and said the march was intended to highlight their demands in a peaceful and democratic manner. Later, a team of district administration officials visited the protesting students at the Jaipal Singh Munda Stadium and spoke to those sitting on hunger strike. Student leaders said the administration sought details of members of the core committee and assured that they were cooperating with the process. Student leader Devendranath Mehto continued his hunger strike for the 10th consecutive day while undergoing treatment at Sadar Hospital. Later, BJP leaders, including State General Secretary Amar Kumar Bauri and State Vice President Bhanu Pratap Shahi, reached the protest site and expressed support for the students. The students, however, have reiterated that their protest and hunger strike will continue until their key demands are addressed. Student leaders also appealed to Chief Minister Hemant Soren to resolve their demands at the earliest, warning that the agitation could turn into a mass movement if the issue remains unresolved. Mahesh Rahman, Akashwani News, Ranchi.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in. and download the News on AIR app. The Supreme Court has directed the Election Commission to provide details of appeals decided so far by appellate tribunals appointed by it to deal with pleas of people whose names were deleted during the Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls in West Bengal. A bench headed by Chief Justice Suryakant took note of a plea filed by Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary seeking speedy disposal of SIR-related cases pending before the appellate tribunals in the state. The court sought details of cases already decided and those still pending before the tribunals. In Mumbai, two persons lost their lives and four others were injured in a fire incident in Ville Parle last night. According to authorities, the fire broke out on the 11th floor of a ground plus 12-storey building in Ville Parle West. The incident was reported by the BMC's Fire Brigade Control at around 10 p.m. The BMC's Fire Brigade Ambulance and other services were immediately pressed into service. Six people

0: Asian Age Rides take Viksit Bharat vow on Independence Day. Center approves 1 billion 10 and 20 rupee polymer bank notes for field trials. Headlines for Hindu. A headline in the Indian Express writes, amid pushback from opposition, government ready to refer FCRA bill to JPC. The Economic Times states, Fitch retains India growth outlook at stable. Robust growth and solid external finance fundamentals will balance fiscal and energy risks. Keeps credit rating at BBB. In a major move to deepen US-India bilateral space collaboration, NASA invites ISRO to Moon Base project, reports the Hindustan Times. The Times of India writes about a study stating with global rise in exposure to dangerous humid heat, India is emerging as the most affected country. Another headline in the same paper writes, no more plastic sachets for pan masala. Under the headline, women are second to none in India's skill-building vision. An op-ed in Hindustan Times writes about the fact that women comprise over 56% of certified candidates under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, demonstrating that aspiration for technical mastery is universal. And finally, the Pioneer carries a story under the headline, Delhi unveils four tourism circuits, presenting the national capital as an integrated tourism experience and develop it as a destination city for a transit hub. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan flags off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic, West Bengal today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: जन जन तक पहुंचे पैगाम डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान
4: यदि किसी को तेज बुखार सिर दर्द आंखों के पिछले हिस्से में दर्द नाक बहना उल्टी होना भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें मच्छरों से बचें घर के आसपास सफाई रखें पानी की टंकी गमले कूलर इत्यादि को साफ रखें हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं
5: तो सुन लो सुन लो बहना डेंगू से तुम बच के रहना
4: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा पहले मुख्य समाचार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी अब वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह मिलेगा कानूनी संरक्षण झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी में कथित अनियमितता को लेकर आंदोलन जारी छात्रों ने मौन जुलूस निकालकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखने का किया प्रयास मुख्यमंत्री ने सुरक्षित परीक्षा सुधार नीति जल्द तैयार करने की घोषणा की कहा सरकार पारदर्शी निष्पक्ष और जवाबदेह परीक्षा व्यवस्था करेगी सुनिश्चित विधानसभा का मॉनसून सत्र तय समय से एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेवार और मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 4-5 दिनों तक बारिश होने का जारी किया पूर्वानुमान आज और कल कई जिलों में वज्रपात होने की चेतावनी जारी और अब समाचार विस्तार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है इसके साथ ही यह संशोधन विधेयक अब कानून बन गया है इस कानून के तहत वंदे मातरम को वही कानूनी संरक्षण मिलेगा जो वर्तमान में राष्ट्रगान को प्राप्त है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी है

0: छात्र कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं। इस बीच कल शाम आंदोलनकारी विद्यार्थियों ने मौन जुलूस निकाला। इसमें शामिल छात्रों ने पूरी तरह मौन रहकर अपनी बात रखने का प्रयास किया। पेशे एक रिपोर्ट।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी और प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही समेत कई नेता प्रदर्शन स्थल पहुंचे और छात्रों को समर्थन दिया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन छात्रों को डराने का प्रयास कर रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य संभावित असामाजिक तत्वों की पहचान करना है। छात्रों ने हालांकि दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। छात्र नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द मांगे पूरी करने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि समाधान नहीं होने पर आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले सकता है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वहीं देर रात जिला प्रशासन के अधिकारी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने अनुरोध किया कि वे अपना विरोध जारी रखें, लेकिन खाना भी खाएं ताकि उनकी सेहत पर बुरा असर न पड़े।
2: हम लोगों ने काफी अनुरोध किया है और उनके मन में किसी तरह का कोई संशय है वो भी हम लोगों ने प्रयास किया है, और हम फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग अनशन छोड़ दे ताकि उनके स्वास्थ्य में कोई प्रभाव न पड़े। नेक्स्ट स्टेप की तरफ सभी छात्र लोग ही सोचे, उसी के अनुसार हम लोग भी इस सहयोग करेंगे।
0: जेपीएससी पीटी और बैकलॉग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं रद्द किए जाने के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। सफल अभ्यर्थी रांची स्थित ऑक्सीजन पार्क में उन्होंने धरना दिया और परीक्षा रद्द करने की बजाय पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि बिना जांच के पूरी परीक्षा रद्द करना उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने ईमानदारी और मेहनत पर सफलता हासिल की है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म और विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत छात्रों से मिले और उनका हाल जाना। उन्होंने विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को सुनने के लिए मुख्यमंत्री को खुद उनके बीच आकर उनसे सीधे संवाद करना चाहिए।
3: पारदर्शिता परीक्षा और परिणाम के लिए और घटित घटनाओं की जांच करने के लेकर जो आंदोलन हो रहा है उस पर सरकार के पास इतना समय क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं आ रहा? और शिक्षा मंत्री का दायित्व तो खुद मुख्यमंत्री के ऊपर है, शिक्षा मंत्री के रूप में सामने क्यों नहीं आते और इस प्रोटेस्ट को क्यों नहीं समाधान करते हैं? और इसका जवाब किसी और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को देना चाहिए।
0: सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बताया कि छात्रों के साथ अभियान के तहत अब तक झारखंड के 8,500 से अधिक युवाओं ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अपने सुझाव भेजे हैं। सीएम ने कहा कि ऐसी परीक्षा व्यवस्था तैयार करना है जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह हो। उन्होंने झारखंड के युवाओं से अपील की कि वे अपने सुझाव देना जारी रखें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
4: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
5: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
6: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप

0: सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
1: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के मामले पर विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण सदन पूरी तरह बाधित रहा। सदन में न तो प्रश्नकाल चल सका और न ही शून्यकाल की सूचनाएं ली जा सकीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार टकराव के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। मुख्यमंत्री ने समय से पूर्व सत्र स्थगित किए जाने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि सरकार जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, इसलिए सदन की कार्यवाही तय समय से एक दिन पहले ही स्थगित कर दी गई।
3: बिल्कुल समझ में आ रहा है कि भाई सरकार जनता के सवालों का जवाब देना नहीं चाहती है। उनको लगता है कि विधानसभा चलेगी, विरोधी दल के विधायक आवाज उठाएंगे, तो इस आवेश से वो बचना और उसका एक ही मात्र रास्ता उनको सुझा कि विधानसभा का सत्र अवसान कर दिया जाए।
2: राज्य सरकार ने अमृत 2.0 मिशन के तहत रांची शहर में सीवरेज परियोजना और जलाशयों के सौंदर्यीकरण से जुड़ी योजनाओं में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। रांची सीवरेज प्रबंधन परियोजना की लागत में कमी लाने और कुछ अन्य योजनाओं के पुनर्गठन के बाद बची राशि से तालाबों के पुनर्जीवन और पार्क विकसित किए जाएंगे। चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने कल नई दिल्ली में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सत्येंद्र सिंह से मुलाकात कर चतरा के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। सांसद ने अमृत 2.0 योजना के तहत चतरा शहर में आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की मांग रखी। मौसम विभाग ने झारखंड में आगामी 4-5 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 12 और 13 को कई जिलों पर बारिश वज्रपात का ज्यादा असर रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने 14वीं जेपीएससी पीटी और दो बैकलॉग परीक्षाएं रद्द करने की सीएम की सदन में घोषणा को पहले पन्ने पर प्रमुखता से दिया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रांची में दोपहर तक थमी रफ्तार, अन्य जिलों में मिलाजुला असर, 200 कार्यकर्ता हिरासत में। प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर लिखा है, नहीं चला मानसून सत्र, होता रहा हंगामा, एक दिन पहले विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। दैनिक जागरण लिखता है, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष ख्यांगते पर बिनसिस से भी 2 करोड़ रुपए के सौदे का लगा आरोप। हिंदुस्तान ने सीआईडी की पूछताछ में जेपीएससी 11वीं 13वीं में भी आरोपी अभय तिवारी के लेन देन के आरोपों को स्वीकार करने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी। अब वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह मिलेगा कानूनी संरक्षण। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी में कथित अनियमितता को लेकर आंदोलन जारी। छात्रों ने मौन जुलूस निकालकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखने का किया प्रयास। मुख्यमंत्री ने सुरक्षित परीक्षा सुधार नीति जल्द तैयार करने की घोषणा की। कहा, सरकार पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह परीक्षा व्यवस्था करेगी सुनिश्चित। विधानसभा का मॉनसून सत्र तय समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेवार। और मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 4-5 दिनों तक बारिश होने का जारी किया पूर्वानुमान। आज और कल कई जिलों में वज्रपात होने की चेतावनी जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। समय हो रहा है लोकगीतों का। लोकगीतों का कार्यक्रम माटी के महक में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बांग्ला बाउल गीत। गायक कलाकार हैं पूरन दास।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं बाउल गीत पुरनदास के स्वर में।

आप सुन रहे हैं श्रोताओ बाउल गीत पुरंदास के स्वर में। हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं। इस गीत के साथ ही हमारा कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं पे संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पे। सुबह के 9 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा, नमस्कार। कार्यक्रम विविधा में श्रोता हम विभिन्न विषयों पर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, समसामयिक विषयों पर, दिवस, सप्ताह, पखवाड़ा, इन सब विषयों पर, साहित्य से संबंधित बातें हम कार्यक्रम में रखते हैं। आज हम जल संरक्षण, अभी बारिश हो रही है, इस पानी को सुरक्षित रखना ज़रूरी है। जल कितना हमारे लिए ज़रूरी है हम सभी जानते हैं। जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है, हम जीवित नहीं रह सकते हैं, ये हम सभी जानते हैं। और जल को बचाए रखना कितना ज़रूरी है इससे भी हम सभी वाकिफ़ हैं। तो जल संरक्षण सिर्फ पानी को बचा के रखना, उसे बर्बाद होने से हम सभी को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। उसका कहने का तात्पर्य ये है कि जल का सही उपयोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जलस्तर जो है किस तरह से एकदम नीचे चला जा रहा है, एकदम से घटता चला जा रहा है। हम लोग पानी के लिए अभी कहीं कहीं देखेंगे कि नलकूप या जो बोरिंग किया जाता है वहाँ पे पानी आता ही नहीं है। तो ऐसे में कितनी परेशानियाँ होती होगी, हम सभी इससे वाकिफ़ हैं। तो जल को बचाए रखना, उसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जीवन और प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रकृति हमारा शुद्ध रहेगा, स्वच्छ रहेगा, संतुलित रहेगा, तो हम जीवन सही तरीके से जी पाएंगे। जल यानी हर समय नियम पूर्वक रहेगा, यथा समय, समय के साथ साथ सब कुछ चलता रहेगा। तो जीने के लिए साफ पानी की आवश्यकता है। साफ पानी सिर्फ हर जीव

हम लोगों को क्या करना है, जो बर्तन धोते हैं या जो आया आती है उसको बता देना है कि गमले में पानी लेकर के पहले अच्छी तरह से सबको धो ले, गमले में पानी लेकर के या बाल्टी में पानी लेकर के धोए। इससे हम पानी जो बर्बाद हो रहा है, जल जो अतिरिक्त बह जाते हैं, वो ऐसा नहीं होगा, बर्बाद होने से पानी बचेंगे। तो खेती की सुरक्षा, हम लोग फसल को उगाते हैं, फसल के लिए कितना ज़रूरी है, अभी इस मौसम में पानी को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही पानी आगे चल करके हमें सिंचाई के लिए हम उपयोग में लाते हैं। कभी कभी हम लोग विशेष करके हम कहना चाहेंगे किसान भाई से, जो परती ज़मीन में जिसमें आप खेती बाड़ी नहीं करते हो, वहाँ उसमें किसी तरह से गड्ढा बना ले, जिससे पानी अभी जो बरसात का जो बरसात की जो पानी है उसको आप एकत्रित कर सके। तो गड्ढा ऐसा गड्ढा बनाएं जो पानी पर्याप्त मात्रा में वहाँ रह सके, है ना, कि वो पानी सिर्फ आपका सिंचाई के लिए नहीं, उसमें आपका व्यवसाय भी आप कर सकते हैं, यानी कृषि पर आधारित कार्य भी उसमें आप कर सकते हैं, मुर्गी बत्तख पाल सकते हैं, मछली पाल सकते हैं, है ना। वो पानी साफ रहेगा तो आप कुछ जैसे कपड़ा धोना या अन्य कुछ कार्य उसको आप कर सकते हैं, यानी बड़ा सा गड्ढा, ये छोटा सा तालाब का रूप आप देते हैं, जिसको हम बोलते हैं न पोखर जिसको हम बोलते हैं, उसका रूप दे देते हैं। और ये आप यदि करते हैं तो अभी इस मौसम में बहुत ज़रूरी है पानी को एकत्रित करना, क्योंकि खेती के लिए ज़रूरी है। और ये हम लोग जानते हैं कि जल प्रकृति का प्रकृति को संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि जल ही है जो हर जीव जंतु को जीवन दान करता है। तो इसलिए हमें समय रहते हर कार्य को करना बहुत ज़रूरी है। पानी बचाने के जो उपाय हैं, जो कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, जैसे मैं ही हूँ, बड़ा सा टब है, उस टब में बरसा के जल को मैं एकत्रित कर लेती हूँ। दो बड़ा बड़ा टब है, जो टब अभी मेरा मिसयूज़ है, तो उसमें मैं इकट्ठा कर लेती हूँ पानी, और फिर जिस वर्षा नहीं होने पर, अभी ऐसे से हुआ ना, आज हुआ तो एक सप्ताह नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या है, उस पानी को हम पेड़ पौधे में, हमारे जो गमले में पौधे हैं उसमें हम डालते हैं, है ना। कोई छोटा मोटा कार्य जैसे आंगन धोना, इधर उधर धोना, पानी डालना, तो वो पानी हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो ऐसा करने से हम जो पानी पीने के लिए उपयोग में लाते हैं उसका हम बचत कर सकेंगे, उसको हम सही तरीके से रख पाएंगे। तो कभी कभी हम लोग छोटे बच्चों को भी हम लोग देखते हैं ना, श्रोताओं, बच्चे ब्रश कर रहे हैं, नल का जो टेप है उसको खोल दिया है, तो नहीं, उन्हें मग देना है और मग में ही पानी लेकर के ब्रश मुंह धोना है, है ना। अतिरिक्त पानी का, पानी के बारे में बताना कितना ज़रूरी है, जल हमारे लिए हर चीज़ के बारे में उसे जागृत करना ज़रूरी है। यदि हम बचपन से बच्चों को बताएंगे तो उन्हें जागृत करेंगे तो वो जानेंगे ज़रूर। तो इसलिए हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का हमारे जीवन में, जितना भी जितने भी चीज़ है प्रकृति ने जो हमें निःशुल्क प्रदान किए हैं, उसका हमें सही इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कोई भी चीज़ हमें बर्बाद होने से बचाना ज़रूरी है। तो हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है, जल को, अभी जो वर्षा के जल है उसको आप संरक्षित करेंगे और जल को बचाए रखेंगे, मिसयूज़ नहीं करेंगे, और कोई भी काम कर रहे हैं तो नल खोल के नहीं करके बाल्टी में मग में लेकर के करें, ताकि अतिरिक्त पानी बहने से आप बचा सकें। तो चलिए, इस विषय में तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत जानकारियां हम ले सकते हैं, तो बातों कहीं पे विराम देते हुए एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुनते हैं, नंदी दुग्गल और साथियों के स्वर में।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम विविधा में। और अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के योगदान पर कुछ बातें। जी हाँ श्रोताओं, हम सभी जानते हैं महिलाएं आज हर क्षेत्र में हैं, आगे शुरू से ही महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी देती आई हैं, चाहे घर हो, बाहर हो, समाज, परिवार, हर जगह में अपनी जहाँ जिस तरह से उनकी आवश्यकता महसूस की गई वो अपनी जो भूमिका है वो अदा की है। स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत ही सुंदर तरीके से वो आगे आई हैं, पीछे नहीं हटी, घर बार संभालते हुए स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली। हम सभी जानते हैं, या यूं कहें इतिहास के पन्नों को यदि हम लोग पलट कर देखते हैं तो हम पाएंगे कि जो महिलाएं मातृसत्ता से पितृसत्ता की ओर अग्रसर होती हुई मानव सभ्यता किस तरह से पुरुषों की शक्ति में निरंतर वृद्धि की है, कैसे वो शक्ति स्वरूपा बन करके अपने कार्यभार को संभाली है, ये हम सभी इतिहास के पन्नों में पलटते हैं तो पाते हैं। कई महिलाएं हैं, महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में उनके अधीन, मतलब अधिक से अधिक जितने भी कार्य या उनका जो भागीदारी है वो देती आई हैं। हम लोग बहुत सुंदर तरीके से जानते हैं कि हमारी मातंगिनी हाजरा, प्रीतिलता बर्देदार, अरुणा आसिफ अली, सरोजनी नायडू, हमारी खूब लड़ी मैदानी वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, कौन भूल सकता है भाई, हजरत महल है ना, उसके बाद बेगम जीनत महल, ये सभी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है। उसके बाद उषा मेहता, कई ऐसे, सरोजनी नायडू भी है मैंने बताया, तो ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके बारे में हम सभी पढ़े जानते हैं कैसे वे सभी आकर के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जो भूमिका है, जो योगदान है वो देती आई हैं। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई कैसे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह से साहस दिखाई हैं, अपने इसी साहस का परिचय देते हुए उन्होंने महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम कर गई हैं कि एक महिला एक छोटी सी उम्र में क्या नहीं कर सकती है यदि उसमें आत्म बल हो। और हम सभी जानते हैं जो नारी होती है आत्म माने शक्ति स्वरूपा होती है, बल से परिपूर्ण होते, मतलब वो उनके पास वो सभी गुण है जिससे वो अपने आप को एकदम सुंदर तरीके स्थापित कर सकती हैं समाज में, लेकिन उसके लिए उन्हें सहयोग की आवश्यकता होती है, उन्हें समाज में परिवार में एक स्थान सुंदर तरीके से मिले, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी लक्ष्मीबाई शुरू से ही वीरंगना थी, वीर थी और तेज थी, पराक्रमी थी, हर क्षेत्र में वो एकदम कहा जाए विदुषी जिसको हम बोलेंगे वो थी। तो कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सुंदर तरीके से एक स्थान कायम की हमारे समाज में, नारी जगत में एक मिसाल बनकर उभरी हुई हैं। कभी भी किसी भी कोई भी महिला जो बहुत तेज तर्रार हर क्षेत्र में पारंगत हर क्षेत्र में, तो उसे कहा जाता है ना कि तुम रानी लक्ष्मीबाई हो, है ना, तो ऐसे ही हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। सरोजनी नायडू हम सभी जानते हैं
कि सरोजिनी नायडू की जो भाषा है, किस तरह से भाषण के जरिए स्वतंत्रता संग्राम में अपने कलम, भाषा, शब्दों के जरिए अपनी जो भूमिका है, नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को संगठित की और एक सुंदर परिवेश तैयार की। वही मैं शॉर्ट में ही दे रही हूँ जानकारी श्रोताओं, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका बहुत विस्तृत है। तो हमारी उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सुंदर तरीके से भाग ली और उसमें सुंदर तरीके से अपनी भूमिका को अदा की, मातंगरी हाजरे भी वही थी जो गोलियां खाती हुई, माने अंग्रेजों की गोलियों का सामना करते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, एकदम अपने आप को आहुति दे दी, मतलब स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये हम सभी उनको कभी भूल नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही कई महिलाएं हैं जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है। तो हम लोग जानते हैं ऐसी महिलाओं को, हम लोग हमेशा से पूछते आए हैं, उनकी प्रेरणा स्रोत से हम सभी आगे बढ़े, ये हम सभी से, सभी महिलाओं से ये कामना करते हैं। और इस विषय पे फिर कभी और हम विस्तार से जानकारी देंगे। फिलहाल चलिए एक यहाँ पे बातों को इस विराम देते हुए एक सुंदर सा देशभक्ति गीत भी हम लोग सुन लेते हैं। तो आइए देशभक्ति गीत सुनते हैं महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में।

हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:31 हो चुके हैं और आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में फिल्म साजन का गीत, समीर के बोल, नदीम श्रवण के संगीत हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

और अब सुनते हैं फिल्म सड़क का गीत, अनुराधा पौडवाल कुमार सानू के बोल हैं, समीर के संगीत, समा करे गीत समीर की है और संगीत नदीम श्रवण के।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सुहाग का गीत लता मंगेशकर के स्वर में, आनंद बख्शी के बोल और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब सुनते हैं अलका याग्निक के स्वर में फिल्म सिर्फ तुम का ये खूबसूरत सा गीत।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
0: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
2: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की
0: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
2: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
0: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि

0: छठा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ, उन्हें हमारा शत शत नमन।
1: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
0: जी,
1: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
0: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
1: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोष, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
0: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
1: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
0: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।
1: जी, और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
1: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA के छात्र थे तभी एक दिन
3: अरे दिलीप।
4: हाँ सुभाष।
3: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
4: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
3: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियां खाने का शौक है, मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
4: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
3: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
4: तो फिर?
3: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
4: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
3: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
4: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
5: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
3: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
5: Is that right? You black monkey?
4: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर

0: वाह जी जी, बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
1: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
0: क्यों ब्लडी रैस्कल, यू आर टेलिंग मी व्हाट टू डू? तुम्हारा यह हिम्मत?
1: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
0: तो क्या करेगा हा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? यू स्काउंडर, यू ब्लडी स्वाइन, बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
1: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
0: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
1: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
2: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की। लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
3: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
4: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
3: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
4: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
3: और अपने सुभाष बाबू?
4: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी, तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया, और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
1: कितनी सजा हुई? नालायक कहीं के, सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
3: क्या हुआ सुभाष बाबू?
1: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूं कि कोई मुर्गी चोर?
2: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से

0: रही है। यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
1: कौन? शिशिर?
2: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ। दरवाजा खोलिए।
1: आओ, अंदर आ जाओ। क्या खबर है?
2: सब तैयारी हो गई है। पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे। मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
1: ठीक है, चलो। लेकिन मेरे ये कपड़े?
2: उसका भी प्रबंध हो गया है। आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
1: ठीक है।
2: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी। किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी ज़ियाउद्दीन नहीं है।
1: तो फिर ठीक है, आओ चलें।
2: चलिए।

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ है मौलवी साहब।
3: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
3: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
4: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
3: अच्छा, खुदा हाफिज।
4: खुदा हाफिज साहब।
5: लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल ना जाने क्या हो।
6: ये अखबार कहां गए?
5: हाँ, ये रहा। कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा। अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया।
7: जय

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
5: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानों उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। नमस्कार।
4: जब सभी लोग भक्ति में लीन है मीनाक्षी, तो हम क्यों पीछे रहे?
5: बिल्कुल। हाँ।
4: तो प्रोग्राम की शुरुआत कुछ
5: शिव भजन से।
4: बिल्कुल, बिल्कुल।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: जोहराची कार्यक्रम में अब वक्त है सुविचार का, क्योंकि अगर किसी भी काम की शुरुआत या दिन की शुरुआत अच्छे से विचार या पॉजिटिव थॉट्स के साथ हो तो सब अच्छा रहता है ना?
6: हाँ बिल्कुल। तो श्रोताओं, जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं, मान बैठे हैं कि आप उनसे बेहतर हैं।
5: बिल्कुल,
6: और ये सही भी है ना, तभी तो वो आपसे जलते हैं, पीठ पीछे आपकी बात करते हैं। तो बस किसी भी बात के से घबराए नहीं, और फिर
5: देखिए सब कुछ अच्छा ही होगा, है ना?
6: बिल्कुल।
5: और ठीक ही कहा आपने कि अगर वो आपकी बातें कर रहे हैं, मतलब कुछ तो आप में अच्छा है ना उनसे, तभी हाँ, तो आपकी बातें कर रहे हैं।
6: हाँ, तो इन सब छोटी छोटी बातों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
5: बिल्कुल,
6: आप बस अपना काम कीजिए और बस जीवन में आगे बढ़िए,
5: फिर देखिए सब कुछ अच्छा होगा।
6: बिल्कुल।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं जो हार रांची कार्यक्रम लेकर। और अब विनीता दी, मौसम की जानकारी भी श्रोताओं को दे, है ना। तो कल जैसे मंगलवार को बारिश हुई है ना 45 मिनट, उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद मौसम बिल्कुल साफ हो गया।
3: ये अच्छा है ना, अगर एक समय धूप निकल जाए तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है हमें।
2: हाँ, अचानक शाम को काले बादलों, गर्जन और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। फिर उसके बाद लेकिन जहाँ तहाँ शहर में क्या हुआ ना, जल जमा जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी
3: हो रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि बारिश के मौसम में कब क्या होगा, मतलब कब बारिश होगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि अभी दो

0: 4 दिन ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है।
1: हाँ, और गुरुवार से राज्य में मौसम एक बार फिर यानी कल से करवट लेगा और रांची सहित आसपास के जिलों में 3 दिनों तक घने बादल छाए रहने और भारी बारिश होने का
0: पूर्वानुमान है। और तापमान की बात करें तो
1: हाँ,
0: बताइए।
1: तो आज का अधिकतम तापमान 32.6 और न्यूनतम 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
0: बिल्कुल।

0: और अब जो है रांची में कुछ बातें आज के दिन हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की करते हैं, है ना।
1: यानी इतिहास की मुख्य घटनाओं पर नजर
0: बिल्कुल
1: डालते हैं।
0: बिल्कुल। तो 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि हस्ताक्षर किए, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इतिहास में ये दर्ज है कि इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया, और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी।
1: और 1960 में आज ही के दिन नासा ने अपना पहला सफर संचार उपग्रह इन्फोए प्रक्षेपित किया था आज के दिन।
0: बिल्कुल। और आज ही के दिन फिल्म तारे जमी के लिए गोलापुरी श्रीनिवास मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया था। और उनकी भी बातें कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है।
1: हाँ हाँ। तो विक्रम साराभाई, जिन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, उनका जन्म आज ही के दिन 1919 में अहमदाबाद में अंबालाल साराभाई के नाम से हुआ था, और इन्होंने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, और आज के दिन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और बातें हो रही आज के दिन की, तो आज कुछ खास दिवस भी है ना मीनाक्षी।
1: हाँ, आज है इंटरनेशनल यूथ डे।
0: बिल्कुल। और साथ ही है अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी, जो कि आज ही के दिन मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 12 अगस्त 2012 को हुई थी। ये दिन हाथियों के संरक्षण, उनकी सुरक्षा, उनके प्राकृतिक आवासों को बचाने के लिए समर्पित है आज का दिन। और जैसा कि आपने बताया कि आज है यूथ डे, तो
1: बिल्कुल आज के दिन की बात तो खास है ही, क्योंकि आज पहली बार सन 2000 में इसका आयोजन किया गया था, इंटरनेशनल यूथ डे का, जिसका उद्देश्य था युवाओं से जुड़े मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना और समाज में उनके योगदान का सम्मान करना।
0: बिल्कुल। और तो, पहली बार 2000 में इसका आयोजन आरंभ किया गया था, और जैसा कि आपने बताया कि युवाओं से जुड़े मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना और समाज में उनके योगदान का सम्मान करना था।

0: आज हमारे पास समय की कमी है ना,
1: हाँ, क्योंकि
0: तो
1: हमारा आज का कार्यक्रम आधे घंटे का
0: आधे
1: है।
0: घंटे का ही है। तो जैसा कि हमने कहा कि सावन का महीना चल रहा है, तो पता है कल ना जब मैं मार्केट गई थी तो चारों तरफ बस केसरिया रंग के कपड़े दिख रहे थे, जो कितना अच्छा लगता है ना देखने में।
1: हाँ बिल्कुल, इसी से पता चलता है कि सब सावन के रंग में
0: रंग
1: लग गए
0: चुके
1: हैं और
0: हैं,
1: शिव भक्ति में भी लीन है।
0: लीन है। तो सबसे पहले तो जो श्रद्धालु देवघर जा रहे हैं उन्हें ढेरों बधाइयां, है ना।
1: हाँ
0: और देवघर का प्रसाद चूड़ा पेड़े सचमुच
1: हाँ बिल्कुल,
0: याद आ जाता है
1: हमें
0: उन्हें
1: याद।
0: देखकर।
1: हाँ
0: तो चलिए अगर मौका मिले तो हम भी खाएंगे प्रसाद, है ना।
1: हाँ
0: और अब वक्त हो गया है जाने का, तो चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, क्योंकि इसका असर सेहत पर जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए मुस्कुरा कर खुद को हेल्दी बनाइए, है
1: यानी
0: ना।
1: कि खुश रहना बहुत जरूरी
0: बहुत
1: है।
0: जरूरी है। तो इन मंगल कामनाओं के साथ जो है रांची में आज बस इतना ही। तो विनीता
1: और मीनाक्षी को कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार,
0: नमस्कार,
1: जोहार।
0: जोहार।
2: ताकि न दिखे, ताकि न दिखे, ताकि न दिखे, ताकि न दिखे।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार रांची। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर और 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए, जिसमें आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता रांची के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार झा से गौरव कुमार की बातचीत। प्रस्तुति प्रभु शरण की है।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम इनसे मिलिए में। और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर राजेश कुमार झा, जो राज हॉस्पिटल रांची के सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और साथ ही वाइटैलिटी कार्डियक क्लिनिक के भी सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर हमारे श्रोताओं को संक्षेप में आपका परिचय बताएं। सर
2: नमस्कार श्रोतागण, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मेरे बारे में। मैं राजेश कुमार झा हूं और मेरी इनिशियल पढ़ाई बिहार में हुई थी 6-7 तक। उसके बाद फिर मैं पापा रांची आ गए तो मैं भी रांची आ गया। रांची से मैंने 10th और 12th किया, फिर MBBS एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहली बार नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में। फिर MBBS मैंने मुंबई से किया, फिर MD मेडिसिन मैंने रांची से किया, DM कार्डियोलॉजी मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से किया, फिर वहीं पर मैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट था GB पंत हॉस्पिटल में और आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में। फिर वहाँ से मैं राज हॉस्पिटल रांची में आर्टेमिस हॉस्पिटल का एक ग्रुप कार्डियोलॉजी सेंटर मैंने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया और पिछले 9 सालों से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। एक चीज़ जो मैं इम्पॉर्टेंट है आजकल जो युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ, कई लोग मेडिकल अभी नीट का काफ़ी चल रहा था चर्चा, तो मैंने जानबूझकर आपको ये बताया कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट में MBBS हुआ था, कि ऐसे लोग जिनको पहली बार नहीं होता है उनको हताश नहीं होना चाहिए। और मैं भी हताश नहीं हुआ था और पूरी एनर्जी से अगली बार मैंने दिया और MBBS भी किया। और आज के डेट में मैं रांची में अच्छा कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ, हेल्दी प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ लोगों को, यंग जनरेशन को, कि हताश नहीं होना चाहिए और मेहनत से, लगन से। मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट कभी भी नहीं था, लेकिन बहुत मेहनती था हमेशा। मैं पढ़ाई काफ़ी लंबे टाइम तक करता था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंटेलिजेंट हैं वो मैटर नहीं करता है, मैटर यही करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं और कितना टाइम आप डिवोट करते हैं अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उस समय के लिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं।
1: ये इंटेलिजेंस और डिलिजेंस का जो सर आपने फर्क बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए, कि परसिवियरेंस होना चाहिए कि जब आपने गोल डिसाइड किया तो आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार चलते रहें।
2: जी,
1: आप दौड़ेंगे तो थक सकते हैं लेकिन चलेंगे तो आप लंबा चल सकते हैं। सर चिकित्सा के क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: चिकित्सा के क्षेत्र में प्रेरणा बचपन से ही पापा बोलते थे कि डॉक्टर बनना है, तो मैं देखता था। फिर एक बार बीमार पड़े, मैं रांची में बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 94-95 की बात, उस समय पापा को लेकर रात को हम लोग 2 बजे गए थे सेवा सदन, गए राज हॉस्पिटल, यही 2 हॉस्पिटल होता था रांची में, रिम्स जाते नहीं थे। तो उस समय मुझे लगा कि यहाँ काफ़ी अभाव है, क्योंकि मैं एक बार दिल्ली गया था, देखा वहाँ काफ़ी सारे सुविधाएं हैं। और यही सोचकर मैं उसी टाइम डिसाइड किया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और ये भी डिसाइड किया कि मैं महानगर में नहीं रहूंगा। उस समय यही ये नहीं पता था कि रांची ही रहना है, लेकिन ये था कि मैं छोटे शहर में रहूंगा क्योंकि सुविधाएं कम हैं। तो अलग
1: कहीं ना कहीं सर उस अभाव ने आपको, आपको एक कैटलिस्ट के तौर पर, एक प्रेरक के तौर पर उसने आपको आगे बढ़ाया।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: सुविधाएं होनी चाहिए।
2: हर आदमी जो भी आप अपने फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कैटलिस्ट जरूर मिलता है जो आपको प्रेरित करता है कि नहीं ये करना है, तभी आप आगे बढ़ते हैं।
1: सर उस दौर से जब जब वो एक हताशा का दौर होता है, घर का कोई वरिष्ठ व्यक्ति बीमार होता है तो बड़ी निराशा वाली स्थिति बनती है, और वहां से सर आज आप जिस जगह बैठे हैं कि एक वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर आप रांची में हैं और बहुत लंबी आपकी प्रैक्टिस है, तो इस यात्रा का मूल्यांकन कैसे करते हैं सर?

0: मिनिस्टर के कार्डियोलॉजिस्ट से होते हुए डायरेक्टर मैं बना हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमेशा काम के लिए ईमानदारी और जितना मेहनत कर सकते हैं वो किया है। तो वो चीज़ मुझे सीख अभी तक मिली हुई है। और जब मैं आर्टिमिस में गया तो वहाँ के डायरेक्टर जो थे उन्होंने भी मुझे यही बोला, और मैंने उनको यही बोला, ही वॉज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो वो काफ़ी ईमानदार आदमी है। तो वो चीज़ मेरे अंदर अभी भी है और आशा करता हूँ कि पूरी जीवन ये चीज़ मेरे लिए रहे।
1: ये बड़ी प्रेरणादायक बात आपने कही सर कि अपना कार्य अगर हम ईमानदारी से करें और एक एक ध्येय की तरफ हम चलते रहें तो बाकी सारी चीजें अपने आप होती जाती हैं।
0: जी बिल्कुल
1: और जो आपने अवरोधों की बात की तो इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों।
0: जी
1: सर
0: बिल्कुल
1: आपने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर कई बार जीवन और मृत्यु की कॉल्स भी ली होंगी, कई बार स्प्लिट सेकंड के डिसीजंस लिए होंगे सर
0: जी
1: जिनसे किसी पेशेंट की जान बची होगी, कई बार सर ऐसा नहीं भी हुआ होगा जबकि एज अ डॉक्टर आपको हमेशा पता रहता है कि पेशेंट का आउटकम क्या है।
0: जी जी
1: इन स्थितियों को सर आप स्वयं के लिए कैसे मैनेज करते हैं और पेशेंट के परिजनों के लिए कैसे मैनेज करते हैं?
0: एक्चुअली पहले और अभी में प्रैक्टिस करने में बहुत फर्क आ गया है। पहले लोगों को, जो जनरल लोग हैं, उनको ज्ञान का अभाव होता था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते थे, बहुत सारी चीज़ें उन्हें मालूम नहीं होता था। वो यही समझते थे कि डॉक्टर साहब के यहाँ है पेशेंट, अब भगवान चाहेंगे तो बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। तो डॉक्टर भी ईमानदारी से काम करते थे, जैसा भी रिजल्ट रहा। आज के डेट में क्या हुआ है, युवा स्पेशली चैट जीपीटी और बाकी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके और इतने सारे सवाल करते हैं, तो उसमें और जनरल आदमी को ये नहीं पता कि जब हम इंटरवेंशन करते हैं उस समय 1-2 मिनट का ही फर्क होता है। और कई बार हमने देखा 1-2 मिनट में ही पेशेंट का जान भी बचा है, 1-2 मिनट में ही फील हो जाता है कि अब ये नहीं बच सकते हैं। तो वो जो टाइम होता है हमारे लिए वो बहुत ही खराब टाइम होता है, क्योंकि एड्रिनर्जिक लेवल जो है ना, एड्रिनलिन लेवल हमारे शरीर में वो फुल टाइम हाई होता है। तो ये जो इमोशन का जो हमारा अप एंड डाउन होता है, इसी वजह से आप देखे होंगे कि अभी जो डॉक्टरों का एवरेज एज इंडिया में 70 है, लेकिन जो डॉक्टरों का एवरेज एज अभी 60 या 65 ऐसी कुछ है, 5 से 10 साल कम है। और वो ये जो स्ट्रेस लेवल है ना, जनरल लोग नहीं समझ सकते हैं जो हम लोग फील करते हैं। और मानिए ना मानिए, एक चीज़ तो जरूर है कि ये जो भी होता है वो सारा श्रेय हम लोग कुछ ना कुछ अदृश्य शक्ति है, भगवान है, जो भी जैसे बोलिए, जरूर है, क्योंकि उनके बिना हम भी अंदर जाते हैं तो यही सोचकर कि बढ़िया से हो जाए, आने के बाद हमेशा धन्यवाद बोलते हैं। क्योंकि वो 2 मिनट ऐसा होता है जिसमें आप एक्सपर्ट कितने भी बड़े एक्सपर्ट हैं, अगर पेशेंट को बचना है तो डेफिनेटली बच जाते हैं।
1: एक्चुअल में सर मेरा प्रश्न ये होने वाला था ये चैट जीपीटी और यूथ को लेकर के कि ये वेब एमडी से संबंधित जानकारियां और तमाम अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो सामान्य जानकारियां दे देते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो एक एक डॉक्टर एज अ डॉक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी तक पहुंचने के लिए आप लोग अपने जीवन के लगभग 20 वर्ष उसमें डिवोट करते हैं,
0: जी
1: वर्सेस कोई एक व्यक्ति आता है और वो प्रश्न पूछने लगता है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया,
0: जी
1: तो ऐसे में सर थोड़ा सा जो स्ट्रेस लेवल की आपने बात की, आप लोग अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं?
0: देखिए, पहले जब शुरू में स्टार्ट किया था करियर तब लगा था कि ये थोड़ा ऑकवर्ड क्वेश्चन है, अच्छा तुम कौन होते हो पूछने वाले, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया है कि वो भी अपनी जगह पर जायज है, गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो पेशेंट है उनके लिए एक ही पेशेंट है, हमारे लिए तो बहुत सारे पेशेंट हैं, तो हर पेशेंट अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उनके लिए, उनके जो रिलेटिव हैं उनके लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट है। उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन तो पूछेंगे किसी ना किसी से। तो अब हम लोग यही है कि मैं तो करता ही हूँ, और सबसे मैं यही बोलूंगा कि हम लोगों को भी थोड़ा पेशेंसली उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग प्रॉपर होना सबसे ज्यादा जरूरी
1: संवाद
0: है।
1: होना आवश्यक
0: संवाद,
1: है वहां
0: बिना
1: पर।
0: संवाद के अगर हम काम करते हैं तभी ये प्रॉब्लम होता है। तो अब ये आदत सी हो गई है, लोग पूछते हैं, पेशेंसली कूल होकर उनको जवाब दीजिए तो उनको भी अच्छे से समझ में आता है। बस थोड़ा हमें भी समय डिवोट करना पड़ता है और उनको भी सामने वाले को समझना चाहिए। अब उसमें से भी कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझना चाहते हैं, तो अब सबको आप सेटिस्फाई नहीं कर
1: नहीं कर
0: सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं उसमें। सर नीतिगत तौर पर अगर देखें, अगर पॉलिसी लेवल पर हम लोग जाकर देखें, तो एक वरिष्ठ हृदय रोग चिकित्सक होने के नाते पॉलिसी लेवल पर आप क्या चेंजेस चाहेंगे जिससे मास

0: लेवल पर, जिससे आम पब्लिक को, सामान्य जन को हृदय रोग की समस्याओं के निवारण में आसानी हो सके।
1: देखिए अभी रिसेंट टाइम में जैसे आयुष्मान भारत योजना जो है, इससे पहले भी दो तीन योजनाएं हुई थी, लेकिन आयुष्मान भारत योजना में मैं देखता हूं कि ये अब मैं 2017 या 18 से झारखंड में आयुष्मान योजना से लोगों का कर रहा हूं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों का किया है जो जीवन में मुझे मालूम है कि ये दवाई कैसे खाएंगे ये मैं सोचता था, लेकिन फिर भी उनको उनको मैंने एंजियोप्लास्टी किया। अभी काफ़ी सारी योजनाएं, गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी चीज़ें, दवाइयां अवेलेबल रहती हैं, एटलीस्ट ब्लड थिनर और जो स्टैटिन होती हैं उसका रेट भी सरकार ने फिक्स कर दिया है। तो अगर लोगों के मन में कई बार भय होता है कि ये ऑपरेशन नहीं कराना है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे लगता है कि आयुष्मान भारत करीब करीब झारखंड में तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरीज हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जिसके थ्रू हम लोग करते हैं। दूसरी पॉलिसी जो झारखंड जैसे स्टेट के लिए, जहाँ पर अभी भी दुर्गम एरिया में, जिसको हम लोग खूंटी ही बोलेंगे, जो कि रांची से हार्डली 1 घंटे की डिस्टेंस पर है, लेकिन अभी भी वहाँ सरकारी अस्पताल में बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को कुछ मॉडल अपनाना पड़ेगा जिसमें इंसेंटिव लोगों को थोड़ा ज़्यादा आप सैलरी दे करके डॉक्टर को रखें, क्योंकि थोड़ा रिमोट एरिया में कोई भी नहीं जाना चाहते हैं और वो भी इतना पढ़ाई करने के बाद। तो उसमें गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी ऐसा करना चाहिए कि वहाँ के लोगों को एटलीस्ट बेसिक सुविधाएं और बाकी चीज़ें मिले। ऑल्दो अभी आयुष्मान भारत के बाद मैंने देखा है सदर अस्पताल जो भी हैं स्टेट में, उसकी स्थिति काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन उसमें यही है कि कैथ लैब और बाकी चीज़ें जो सुविधाएं हैं वो होने के लिए हम लोगों को थोड़ा अलग से प्लानिंग करना पड़ेगा, ताकि डॉक्टर और नर्सेस वहाँ फुल टाइम रहें, ताकि लोगों को फ़ायदा मिले।
0: एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां प्राइवेट सेक्टर से, सरकारी सेक्टर से जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जो
1: जी
0: वरिष्ठ चिकित्सक हैं,
1: जी
0: दोनों अपनी बात कह सकें और उसके आधार पर कुछ आगे पॉलिसी डिसीजंस
1: नहीं,
0: होने
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि हर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, इतने बड़ा पॉपुलेशन को कंट्रोल मैनेज करना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं अभी झारखंड में मैंने देखा है, आयुष्मान भारत के अंडर में बहुत सारा NHM जो है, नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल हेल्थ रूरल मिशन जो है, उसमें काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल को इंक्लूड किया गया है, और इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है लोगों को, और संवाद भी होता है, इससे आपस में कम्युनिकेशन होता है, बहुत सारे राय हम भी देते हैं, वहाँ से भी हमें मिलता है, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है।
0: सर, सामाजिक तौर पर भी आपका रांची में काफी नाम लिया जाता है, तो सामाजिक तौर पर आप कैसे सक्रिय रहते हैं?
1: जी, मैं जब MD कर रहा था उस समय हमने यहाँ लोधमा गांव है उसमें पूरे गांव को गोद लिया था, पहली बार हमने देखा कि गांव में बिजली तक नहीं है, तो हमने यहाँ पर KK सोन साहब हुआ करते थे DC, उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने काफ़ी सहायता किया, मदद किया, और हम लोग अपने से गांव में बिजली, लाइब्रेरी खुलवाया हमने, हेल्थ के लिए हमने वहाँ पर रेगुलर कैंप 3 साल तक हम लोग किए, और बैम्बू क्राफ्टिंग के लिए लोगों को, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, अभी भी है, यूथ फॉर इक्वालिटी, तो उसके थ्रू हमने असम से एक बॉम्बू के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उनको बुलवाया था रांची, और 2 दिन तक उन्होंने वर्कशॉप करवाया था। उसके बाद से अब जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, एक NMO है, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके थ्रू मैं थोड़ा सक्रिय रहता हूँ, कैंप वैम्प भी करता हूँ रूरल एरियाज में जाकर के।
0: आपकी प्रैक्टिस से जो समय मिलता है सर, बचा हुआ, उसमें आप अपनी हॉबीज को कैसे मैनेज करते हैं? कुछ तो हॉबीज होंगी सर
1: सही
0: ऐसी
1: मायने में
0: आपकी।
1: बोले तो टाइम बहुत कम मिलता है,
0: जी।
1: लेकिन कुछ हॉबीज हैं, एक सुबह एक्सरसाइज और योगा करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो मैं सबको सलाह देता हूँ, हार्ट के मरीजों को जो करना चाहिए, और उसके साथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि गाड़ी में जब भी जाता हूँ तो 103 अपना जो FM है वो मेरा पसंदीदा FM है, क्योंकि उसमें गाना कंटिन्यूअस चलता है, बकवास कम होता है।
0: सर, ये जो जो आपने संगीत या मनोरंजन वाले कार्यक्रम की बात आपने कही, तो क्या संगीत का शौक आपको है?
1: हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ओल्ड सॉन्ग्स मुझे ज़्यादा पसंद है, नए सॉन्ग्स में कम सुनता हूँ,
0: जी
1: सहगल साहब और बाकी जो उस समय का, चूंकि मुंबई में हम लोग एक जगह खाना खाने जाते थे बचपन में, तो वहाँ पर अक्सर ये 70s 50s 60s का गाना चलता था, तो उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता था।
0: कोई कोई एक ऐसा फेवरेट सॉन्ग सर, जो बड़ा दिल के करीब हो आपके?
1: तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सहगल साहब का कुछ बरसात का मौसम है, कुछ चला दीजिए।

0: जी श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान थे डॉक्टर राजेश कुमार झा। आपने हृदय रोग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और साथ ही अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में एक एक झलक उन्होंने दी, जिससे ये पता चलता है कि एक चिकित्सक भी, एक डॉक्टर भी पहले इंसान होता है और तब फिर वो डॉक्टर बनता है, तो वो भी पूरे समाज के विषय में सोचता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपका। इनसे मिलिए कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए, जिसमें आज आपने सुना भेंट वार्ता रांची के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार झा से गौरव कुमार की बातचीत। प्रस्तुति प्रभु शरण की थी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

तो श्रोताओं, सावन का पावन महीना चल रहा है और लोग भक्ति में लीन है। जिधर देखिए उधर केसरिया रंग के कपड़े और लोग शिव भक्ति में लीन है। तो चलिए ना, हम भी कुछ भक्ति में लीन हो जाते हैं और सुनते हैं कुछ भजन।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर और 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, श्रावण आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: वक्त है फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का, जिसमें आज पहला गीत हमने लिया है फिल्म ब्रह्मास्त्र से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा ने।

और आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और शाश्वत सिंह की आवाज में मेट्रो इन दिनों फिल्म का गीत। संगीत प्रीतम का है और इस गीत को सुनने की फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़।

पर अगली फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय और हैप्पी रॉय की। साथ ही दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय की। गाजीपुर से अवधेश रॉय, श्रीमती प्रीति रॉय और नवनीत रॉय की। इन्होंने सुनना चाहा है सत्य प्रेम की कथा फिल्म का गीत, जिसे गाया है पायल देव और विशाल मिश्रा ने। संगीत AM तुराज का है।

और अगली फरमाइश आई है हीनू रांची से प्रवीण कुमार की। इन्होंने सुनना चाहा है प्रेम रतन धन बायो फिल्म का गीत, जिसे गाया है हर्षदीप कौर और शबाब साबरी ने।

और आइए अब सुनते हैं भेड़िया फिल्म का गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और सचिन जिगर ने। और इस गीत को सुनना चाहे मेहर नगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर राही, श्रीमती सरिता गवहानकर और प्रिंस एकांश गवहानकर ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं कॉकटेल टू फिल्म का गीत, जिसे गाया है महमूद और राघव चैतन्य ने। संगीत प्रीतम का है और इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दिन के 12 बजने वाले हैं और ये वक्त है बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का, जिसे लेकर आज आपके साथ है वंदना रॉय और लता।

0: बहनों नमस्कार, कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी सखी लता और हमारे साथ है हम सब की प्यारी प्यारी सखी वंदना।
1: नमस्कार बहनों, और हमारा जो ये देश है वो युवाओं का देश है, ये तो हम जानते ही हैं। और युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत और उसके सुनहरे कल का आधार होते हैं। उनकी ऊर्जा, नई सोच और काम करने की लगन समाज को आगे बढ़ाती है। सही मार्गदर्शन और शिक्षा मिलने पर युवा देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। क्यों लता?
0: बिल्कुल वंदना, तुमने बिल्कुल सही कहा। भारत एक युवा देश है और हमारे युवाओं में शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, खेल, कला और उद्यमिता के क्षेत्र में देश को आगे ले जाने की अपार क्षमता है। यदि युवाओं को सही शिक्षा, संस्कार, अवसर और मार्गदर्शन मिले तो वे देश की अनेक चुनौतियों का समाधान खोज सकते हैं। क्यों?
1: एकदम सही कहा तुमने लता। और युवाओं की जिम्मेदारी केवल अपने करियर तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ईमानदारी, अनुशासन, मेहनत, सामाजिक सद्भाव और देशभक्ति जैसे मूल्यों को अपनाकर वे एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल वंदना, और दे ही रहे हैं। आज के युवा ही कल के वैज्ञानिक, शिक्षक, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, उद्यमी और जनप्रतिनिधि बनेंगे। इसीलिए युवाओं को सही दिशा दिखाना पूरे समाज की जिम्मेदारी है।
1: एकदम सही कहा। और युवाओं के विकास की पहली सीढ़ी है शिक्षा। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सही और गलत में भी अंतर समझने, समस्याओं का समाधान खोजने और जिम्मेदार नागरिक बनने की क्षमता को भी विकसित करती है। और साथ ही विज्ञान और तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष विज्ञान, डिजिटल तकनीक, रोबोटिक्स और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भारतीय युवाओं के अनेक अवसर अब शुरू हो चुके हैं।
0: हाँ वंदना, बिल्कुल सही कहा तुमने। और राष्ट्र की प्रगति के लिए केवल नौकरी करने वाला युवा ही नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाले युवा भी आवश्यक हैं। और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाना ही चाहिए।
1: जरूर जरूर। और हमारे जो आत्मनिर्भर युवा हैं, वे आत्मनिर्भर राष्ट्र की नींव होते हैं। तो लता, इसके बाद चलो हम बहनों को सुनाते एक प्यारा सा।
0: हाँ, और युवाओं को यह भी कहेंगे कि युवा, आप अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से, अपने लक्ष्य से प्यार करें।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: तो मैनू एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
6: सही कहा लता, कहते हैं कि किसी भी मजबूत इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है। ठीक उसी तरह किसी बच्चे का भविष्य भी उसके बचपन में मिले हुए उसके संस्कारों की नींव पर टिका होता है।
5: हाँ वंदना, मैंने बचपन जिंदगी का वह दौर है जब बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं।
6: हाँ, वे देखते हैं कि वो जो देखते हैं वही सुनते हैं और अक्सर वही करने की कोशिश करते हैं जो अपने माता पिता और परिवार के बड़े करते हैं।
5: हाँ, संस्कार सिखाने का मतलब केवल बड़ों को नमस्ते करना सिखाना, सच बोलने को कहना या अच्छी बातें करो यही कहना नहीं, बल्कि संस्कार का अर्थ बच्चे के अंदर ईमानदारी, संवेदनशीलता, अनुशासन, सहयोग, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।
6: सही कहा लता। और बहनों, जब बच्चा घर में किसी को मदद करता हुआ देखता है तो उसके मन में भी मदद करने की भावना पैदा होती है, और वही बच्चे जब अपने माता पिता को, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते देखते हैं तो वे भी बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। क्यों लता?
5: बिल्कुल, ये संस्कार जो है ना वंदना, वो घर से ही आ सकती है। इसलिए हमें इन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसा अपने घर में व्यवहार करेंगे, हमारे बच्चे भी व्यवहार में वही सीखेंगे। और वहीं अगर दूसरी तरफ यह भी होता है वंदना कि अगर उनमें गलती होने पर उसे प्यार से समझाया जाता है तो वह अपनी गलतियों को मान भी लेते हैं और इससे बच्चे अधिक सीखने की कोशिश करते हैं
6: और अपनी गलतियों को सुधारने की भी कोशिश करते हैं। और देखो ना, आज के डिजिटल दौर में बच्चों का स्क्रीन टाइम जो बढ़ गया है, और इसके लिए दोषी बच्चे ही नहीं बल्कि अभिभावक ही ज्यादा

0: है। आज अभिभावक कामकाजी हो गए हैं, माता पिता को अपने बच्चों के लिए समय नहीं है।
1: पर सच कहा जाए तो ऐसे हालात में जब माता पिता दोनों कामकाजी हों तो बच्चों के प्रति तो उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है ना। उन्हें क्वालिटी टाइम देने की जरूरत होती है और बच्चों को मोबाइल नहीं देखने की बात कहने के बजाय हमें उन्हें अपने समय देने की जरूरत होती है। उनसे बातें करें, उनकी बातें सुने, उनके साथ खेले कूदे और बहनों मैं तो यह कहूंगी कि कुछ समय के लिए उसकी साथी बन जाए।
0: याद रखें बहनों, बच्चे हमारे शब्दों से कम और हमारे व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सच बोले तो हमें भी उनके सामने ईमानदारी का उदाहरण बनना होगा। और देखो बहनों कि संस्कार बोझ नहीं, संस्कार तो वह रोशनी है जो बच्चे को जीवन के सही और गलत रास्ते में अंतर समझने की क्षमता देती है।
1: हाँ बिल्कुल, यही क्षमता जो है वो बच्चों में इन तमाम संस्कारों से विकसित होती है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, अपने परिवार का सम्मान करे, समाज के प्रति जिम्मेदार हो, प्रकृति से प्रेम करे, दूसरों के काम आए।
0: सही कहा लता। तो बहनों, हम अपने बच्चों को केवल अच्छे अंक लाने की सीख ना दें बल्कि अच्छा व्यवहार, अच्छे विचार और अच्छे संस्कार भी दें। और आज के आपके दिए हुए संस्कार ही कल आपके बच्चे का व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे।
1: और आज का संस्कारी बचपन ही कल के मजबूत समाज की नींव रखता है।

0: तो बहनों, मुझे लगता है कि इस गीत को सुनकर हमारी जो बचपन की जो अपने बच्चों की यादें होती है ना,
1: वो
0: वो
1: ताजा
0: तरोताजा
1: हो
0: हो गई
1: गई।
0: होगी,
1: सही कहा
0: है ना।
1: लता।
0: क्योंकि हम ये जो पल होता है ना, जो हमारा छोटा नन्हा मुन्ना उठने लगता है, घसकने लगता है, गिरने लगता है, तो अक्सर हम ये गीत जरूर गुनगुनाते हैं। चलो कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि बहनों हम हर दिन आपके लिए जानकारियों का जो है खजाना लेकर आते हैं, तो आज हम अपनी बेटियों से जुड़ी हुई जानकारी लेकर के आए हैं, सुकन्या समृद्धि योजना।
1: हाँ लता, तो सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY भारत सरकार की एक बचत योजना है जिसे बालिकाओं के भविष्य, विशेषकर उनकी शिक्षा और विवाह जैसे खर्चों के लिए दीर्घकालीन बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
0: और बहनों, आपको इसके जो कुछ मुख्य बातें हैं वो हम आपको बताते हैं कि 10 साल से कम उम्र की जो बेटियां हैं उनके नाम पर खाता खोला जा सकता है। यानी कि अगर हमारे घरों में हमारी बेटियां जिनकी उम्र 10 साल से कम है, तो बिल्कुल बेहिचक निश्चित से इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और माता पिता या कानूनी अभिभावक के द्वारा खाता खोला जा सकता है। और इसके साथ आपको यह भी बता दें बहनों कि एक बालिका के नाम पर एक ही खाता खुलेगा, और जमा राशि पर सरकार द्वारा तय ब्याज दर जो है वो भी प्राप्त होता रहता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा जो ये रकम है वो बढ़ता ही रहेगा।
1: और खाते की मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष बाद होती है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना और माता पिता को उनके भविष्य के लिए नियमित रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो बहनों, आप जरूर इस योजना का लाभ उठाएं अपनी बच्चियों के लिए।
0: बिल्कुल वंदना, कितना अच्छा यह योजना है कि हम अपनी बच्चों की जो भविष्य है इस योजना के माध्यम से हम संवार सकते हैं।
1: जरूर।
0: और जब हमारी बेटियां खुद फैसले लेने के लायक जब होंगी, तो उसके लिए यह जो आर्थिक सहायता जो परिजन करते हैं उसके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। और वंदना, जानकारी तो हम बहनों को देते रहते हैं, और अगले कार्यक्रम में हम अपने बहनों को और भी जानकारी से जोड़ेंगे, लेकिन ये जो मौसम है ना, वो जो है हमें सता रहा है, और हमको लगता है कि घर घर हम इससे परेशान हो रहे हैं। क्योंकि बहनों, बारिश जब आती है ना, तो अपने साथ बहुत सारी समस्या लेकर भी आती है। क्यों?
1: और मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी भी तबीयत कुछ खराब है लता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ये मौसम का ही असर है। और देखो ना, ये मौसम जो बदलता रहता है उसमें सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार या संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग बहुत तरह के उपाय कर सकते हैं। जैसे कि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, अपने घर में संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन हमें करना चाहिए, अपने हाथों की साफ सफाई रखनी चाहिए, और मौसम के अनुसार हमें अपने कपड़े का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इस मौसम में अगर हम बाहर का खाना खाते हैं या बासी खाना जो होता है
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल।
1: खाते हैं, तो ये हमारी पाचन तंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है, और इसी की वजह से संक्रमण बढ़ता है शरीर में और बीमार होने का डर रहता है। तो खान पान और सेहत से जुड़ा हुआ कुछ टिप्स भी हम दे सकते हैं, जैसे कि
0: बिल्कुल।
1: ताजा और गर्म भोजन खाएं, और बाहर का खुला हुआ या कटा हुआ जो फल बाहर में हम लोग देखते हैं कि बिक्री होता है, तो उसे ना खाएं। शरीर को हाइड्रेट रखें, यानी कि पानी की कमी न होने दे, उबाल कर या छाना हुआ पानी हमें पीना चाहिए, और फल में विटामिन सी से भरा हुआ फल और सब्जी खाना चाहिए ताकि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो और मजबूत हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहनों। और बहनों, हम महिलाएं हैं, और हमें तो सिर्फ बारिश के ही समय में नहीं, बल्कि पूरे साल अपने घर में अपने परिवार की साफ सफाई की और हर तरह की जो ध्यान है उसे रखने की आवश्यकता है, लेकिन इस खास मौसम में हमें खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो साफ सफाई पर बहनों ज्यादा ध्यान दें, बार बार साबुन से हाथ धोए, जैसा कि हमने पिछले समय में भी यह किया, और बारिश में भीगने से बचे। क्योंकि ऐसा होता है, हमें लगता है कि आज मौसम बारिश वाला नहीं है, थोड़ा धूप है, लेकिन हम छाता लेकर नहीं निकलते, तो हमेशा अपने हाथ में अपना बचाव लेकर चले, और अचानक ठंडे गर्म वातावरण में जाने से परहेज करें। क्योंकि यही जो मौसम होता है ना बहनों, वो हमारे शरीर पर दोहरा असर करता है, और हमें इससे बचने की जरूरत है, और खासकर बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि इस मौसम में ना रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होने लगती है और इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही थोड़ी गर्मी तो लगती ही है और बारिश का भी मौसम जो है वो है, लेकिन इसमें है क्या कि आपको पंखे या कूलर से भी बचाव करने की जरूरत है और एसी का भी नियमित सेवन करने की जरूरत है।
1: सफाई
0: हाँ, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम एसी को कई सालों से, महीनों तो दूर, सालों से सफाई नहीं करते और उसमें क्या होता है कि कीटाणु जो है वो पनपने लगते हैं। तो ध्यान रखे बहनों कि आप इस मौसम में अपने एसी की सफाई जरूर रखें। तो
1: हाँ, हम तो बहनों को यही बोलेंगे कि आप इस तरह से सावधानी रख के अपने और अपने घर में सभी सदस्यों का ध्यान रख सकते हैं। तो
0: हाँ,
1: समय तो बचा ही हुआ है, चलो और एक गीत सुन लेते
0: हाँ,
1: हैं।
0: क्योंकि जब बारिश की बात हो रही है, सावन का महीना है, तो भाई ये रिमझिम रिमझिम रुमझुम रुमझुम से हम कैसे बच सकते हैं, है ना।

0: तो बहनों, इस रिमझिम रिमझुम के फवारों में कहीं गुम तो नहीं हो गई आप? देखिए बहनों, ये बारिश का मौसम वाकई बहुत खूबसूरत मौसम है और इस मौसम का हमें जितना ज्यादा संभव हो सके हमें लाभ ले लेना चाहिए, हमें पेड़ लगाना चाहिए। क्यों?
1: जरूर, वृक्षारोपण ही पर्यावरण संरक्षण का एक बहुत ही जरूरी उपाय है। आप घर में भी अपने होम गार्डनिंग कर सकती हैं,
0: जिसमें सखी को बताना चाहूंगी कि वंदना भी घर में बहुत सारी अपनी किचन गार्डनिंग कर रखी है, तो वंदना हमें बताएंगी कि किचन गार्डनिंग कैसे आप कर लेती हैं।
1: किचन गार्डनिंग में क्या बीज लाती हूँ मैं घर पे,
0: और
1: गमला में उसे लगाती हूँ, फिर समय समय में उसमें खाद डालना पड़ता है। जैसे धूप की आवश्यकता होती है वैसे मैं धूप में उसे रखती हूँ, जब उसे छांव में रखने की आवश्यकता होती है तब छांव में रखती हूँ, लेकिन हाँ उसे विशेष देखभाल की आवश्यकता भी होती है। लेकिन बरसात का मौसम ऐसा मौसम है कि आप कोई भी पौधा अभी घर में लगा सकते हैं जो कि आसानी से लग भी जाता है, इसलिए इस समय वृक्षारोपण करना बहुत ही लाभदायक है।
0: बहुत अच्छा सुझाव वंदना, और मैं यही चाह रही थी कि हमारी सखियां भी जाने कि तुम्हारी किचन गार्डनिंग का राज क्या है और तुम्हारी खूबसूरत हंसी का राज क्या है, शायद यही। तो बहनों, पेड़ लगाए, पौधे लगाए, अपनी बगिया महकाए और हंसी खुशी से जीवन बिताए। बहनों, बातें तो बहुत है लेकिन समय ने हमें इशारा किया है कि अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते हम आपको बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी। तो अपनी सखी लता
1: और वंदना को दे विदा।
0: नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी,
3: अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

0: अभी आपने सुना आलिशा चिनॉय की आवाज में करम फिल्म का गीत, संगीत विशाल शेखर का था। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: सेना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम और आइए अब सुनते हैं भूत बंगला फिल्म का गीत। अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में संगीत प्रीतम का है और इस गीत को लिखा है कुमार ने।

और आइए अब सुनते हैं राज द मिस्ट्री फिल्म का गीत। सोनू निगम, श्रेया घोषाल और नीरज श्रीधर की आवाज में, संगीत राजू सिंह का है और इस गीत को लिखा है कुमार ने।

अजब प्रेम की गजब कहानी। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं। आतिफ असलम और आलिशा चिनॉय की आवाज में, संगीत प्रीतम का है और इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने।

फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आज बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। एक बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचार आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थी सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार नीट परीक्षा को लेकर

0: विद्यार्थियों के प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा संसदीय प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जवाबदेही चाहिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। लगातार हंगामा जारी के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। रक्षा, वित्त, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति, कृषि, पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण, कोयला खान और इस्पात से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की गई। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत, पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे आलेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में गैटलोक के पास एक बुलेरो पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदरोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Home Minister Amit Shah has said that the government is fully prepared to discuss any issue, including the students' issue, and answer any questions raised by the members in the Parliament. Speaking to reporters at the Parliament premises today, Mr. Shah said that the government has nothing to hide and is ready for discussion. The Union Home Minister said the opposition may submit the notice to the Speaker by 2 p.m. for holding a discussion on the issue so that the debate can start at 3 p.m. today.
3: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे।
4: प्लीज सबमिट दैट लेटर टू द स्पीकर बाय 3 PM टुडे। फ्रॉम 3 PM टुडे अंटिल 3 PM टुमारो वी आर रेडी फॉर अ डिस्कशन ऑन ऑल मैटर्स। आई विल रिमेन प्रेजेंट इन द हाउस, लिसन टू एवरीवन।

0: Ayodhya Ram Mandir donations. The speaker appealed to the opposition members to allow the house to function. He said that there may be differences over policies and opinion, but the people of the country want to see parliament functioning. Mr. Birla said, "Today the country is celebrating International Youth Day." He said the youth of the country have made a distinct mark in several fields, including education, space, science and technology, and entrepreneurship. However, due to continuous uproar by the opposition members, the speaker adjourned the house till 2 p.m. The Rajya Sabha has been adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the house met at 11 a.m., Chairman C.P. Radhakrishnan took up the 0 hour. Prime Minister Narendra Modi has said education opens the doors to countless possibilities and provides new directions and innumerable opportunities in life. Mr. Modi released the autobiography of former President Ram Nath Kovind titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles in New Delhi today. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that Ram Nath Kovind's guidance as the President has been a great source of strength for him. He said that Mr. Kovind's autobiography will not only provide insights into his life, personality and contributions, but also serve as a legacy for Indian democracy and society.
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: Textiles Minister Giriraj Singh has called for a major transformation in the handloom sector and stressed that innovation, market-driven designs and sustainable production create new opportunities for weavers and artisans. Addressing the first annual conclave of the Indian Institutes of Handloom Technology, IIHT Sutra 2026 in New Delhi, Mr. Singh said that handloom had once become a powerful tool of resistance against British colonial rule and now needs to become a tool for economic empowerment. Har Ghar Tiranga movement is gaining momentum across the nation. The campaign aims to encourage people to bring the Tiranga home and to hoist it to mark India's independence. In Delhi, Har Ghar Tiranga bike rally was organized by the Culture Ministry today. Addressing the participants, Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the spirit of Vande Mataram had inspired India's freedom struggle and continues to strengthen the nation's identity today. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का लगाया आरोप। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी। छात्रों ने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कैंसर का जल्द पता लगाने और मरीजों की देखभाल के लिए इसे सरकार को सूचित करने योग्य बीमारी घोषित करने पर विचार करने का किया आग्रह। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के 29 पुलिस पदाधिकारियों को किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रपति पदक के लिए अवर निरीक्षक कैलाश प्रसाद श्रेष्ठ का किया गया चयन। और सीएमपीडीआई ने क्रिटिकल मिनरल और सतत विकास के क्षेत्र में शोध और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के ड्यूक विश्वविद्यालय के साथ किया समझौता। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ गई। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले श्री बिरला ने सांसदों से कहा कि प्रश्नकाल चलने दें और सदन में गतिरोध उत्पन्न न करें। देश सदन को सुचारू रूप से चलते हुए देखना चाहता है। इधर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विपक्ष पर बार बार संसद की कार्यवाही बाधित करने की आलोचना करते

0: आरोप लगाया कि उसके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर झारखंड में जारी छात्रों के आंदोलन को लेकर कथित चुप्पी पर भी सवाल उठाया।
1: हमारी सरकार लगातार सदन चलाने के लिए आग्रह कर रही है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, जिसके वजह से वो बाहर नारेबाजी सिर्फ कर रहे हैं और आम लोगों को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके समर्थन में जो सरकार चल रही है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए ये मुद्दा विहीन है। ये जानते हैं कि चर्चा करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हंगामा ये कर रहे हैं।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी है। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ सीधे संवाद करने की अपील की। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं ने भी आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उधर भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो ने आरोप लगाया कि झारखंड में परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं चरम पर हैं। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री महतो ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा की।
2: जिस तरह लाठी से बर्बरता पूर्वक रवैया किया, ये सरासर गलत, इसीलिए हम लोग मांग करते हैं बहाली में गलत तरीके से लोगों को बहाली कर दिया जाए, और जो मेहनत करता उसका बार बार एग्जाम नहीं दे पाता, उसमें एज लिमिटेशन है, तो उनका भविष्य जो अंधकारमय हो जाए। इसलिए बच्चे का जो डिमांड है, छात्रों का जो डिमांड है, वो हम लोग पूरी समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसको सीबीआई को जांच किया जाए, जो एग्जाम हुआ उसको रद्द किया जाए।
0: झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान भाजपा विधायक राज सिन्हा ने अपने साथ हुई कार्रवाई को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज कराई है। श्री सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर रांची जिला प्रशासन पर सदन की कार्यवाही में शामिल होने से रोकने और उन्हें जबरन गिरफ्तार किए जाने का आरोप लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कैंसर का जल्द पता लगाने और मरीजों की सही देखभाल सुनिश्चित करने के लिए इसे सरकार को सूचित करने योग्य बीमारी घोषित करने पर विचार करें। केंद्र ने न्यायालय को बताया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और 17 राज्यों ने पहले ही कैंसर को सूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया है। न्यायालय ने बाकी 19 राज्यों को सिफारिशों पर विचार करने और उचित फैसला लेने का निर्देश दिया। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड पुलिस के 29 पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। इन पुलिस पदाधिकारियों को अपनी वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के जरिए पुलिस विभाग का गौरव बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति पदक, वीरता पदक और सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति पदक के लिए अवर निरीक्षक कैलाश प्रसाद श्रेष्ठ का चयन किया गया है। राज्य के 30 नगर निकायों ने पेयजल योजना को लेकर पिछले 3 वर्षों की समीक्षा रिपोर्ट नगर विकास विभाग को सौंप दी है। इसके आधार पर नगर विकास विभाग शुल्क संशोधन का अंतिम प्रस्ताव तैयार करेगा। इसके अनुसार वाटर कनेक्शन शुल्क में 15-20% तक बढ़ोत्तरी की जा सकती। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। CMPDI ने क्रिटिकल मिनरल्स और सतत विकास के क्षेत्र में शोध और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के प्रतिष्ठित ड्यूक विश्वविद्यालय के साथ 5 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी के तहत कोयला और खनन से निकलने वाले अपशिष्टों जैसे ओवरबर्डन, फ्लाई एश से रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम और ग्रेफाइट निकालने, लो कार्बन तकनीकों और पुराने खदानों के पुनरुपयोग पर संयुक्त अध्ययन किया जाएगा। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन अभियान चला रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच के दौरान कुल 68 किलोग्राम मिलावटी पेड़ा और छोला चटनी जब्त किया। सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ ने आईआईटी आईएसएम प्रबंधन के खिलाफ पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। संघ ने प्रबंधन पर पैसे काटने, पीएफ, वेतन और बोनस में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ के महामंत्री प्रभात कुमार सिंह ने बताया है कि मांग रखने पर सुरक्षा गार्डों को हटा दिया गया।
3: सैलरी कम दिखा के इनका पीएफ लूटा गया है, वेजेज में गड़बड़ी है, बोनस में गड़बड़ी है और इनके सेवा का मोल यही दिया गया कि जब इन्होंने विरोध किया कि हम भाई पैसा मेहनत का नहीं देंगे आपको, तो रास्ता बाहर का दिखा दिया गया। और अनुशंसा भी किया गया है दिल्ली चीफ लेबर कमिश्नर के पास कि इनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए और इन पर प्रोसिक्यूशन प्रोसीड्यूर डायरेक्टर पर चलाया जाए।
0: धनबाद स्थित भटिंडा फॉल में डूबने से चाचा भतीजे की मौत हो गई है। जोगता थाना क्षेत्र निवासी आयुष कुमार अपने जन्मदिन पर चाचा प्रजीत पांडे और दोस्तों के साथ भटिंडा फॉल घूमने गया था। फोटोग्राफी के दौरान अचानक पैर फिसलने से आयुष और उसके चाचा तेज बहाव में बह गए। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपये प्रति किलो है। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर कल चेतावनी रेखा को पार कर गया। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया और गंगा की दूसरी ओर रहने वाले ग्रामीणों और बस्तियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी।
4: रामपुर वाले एरिया भ्रमण करके देख लेंगे कि वहाँ क्वेश्चन के आवश्यकता होने पर क्या प्रबंध किए जाने, बाकी सप्लाईज के, टेंट्स के इत्यादि सभी प्रबंध कर लिए गए हैं, टेंडर ऑलरेडी किया जा चुका है। हम लोगों ने ओझा टोली घाट पे चेक किया तो 26.30 चेतावनी रेखा से 5 सेंटीमीटर अभी पार कर चुका है।
0: मौसम। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण राज्य में बारिश का सिलसिला फिर तेज होगा। मौसम विभाग ने अगले 1 से 3 घंटों में बादल गर्जन और वज्रपात के साथ बोकारो, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना व्यक्त की है। वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची सहित आसपास के जिलों में 16 अगस्त तक घने बादल छाए रहने और भारी बारिश के संकेत हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी हंगामे और शोर शराबी की भेंट चढ़ी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का लगाया आरोप। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी। छात्रों ने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कैंसर का जल्द पता लगाने और मरीजों की देखभाल के लिए इसे सरकार को सूचित करने योग्य बीमारी घोषित करने पर विचार करने का किया आग्रह। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के 29 पुलिस पदाधिकारियों को किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रपति पदक के लिए अवर निरीक्षक कैलाश प्रसाद श्रेष्ठ का किया गया चयन। और सीएमपीडीआई ने क्रिटिकल मिनरल्स और सतत विकास के क्षेत्र में शोध और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के ड्यूक विश्वविद्यालय के साथ किया समझौता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। इसमें आज आप सुनेंगे राग देव गंधार, कलाकार हैं गिरिजा देवी।

0: अभी आप सुन रहे थे अनुरंजनी उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज आपने सुना राग देव गंधार, कलाकार थी गिरिजा देवी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चंद गजलें आशा भोसले की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया, इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
3: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
5: इन तिरंगा यात्रा, बाइक एंड साइकिल रैलीज, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड कंसर्ट्स, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द सेंटीमेंट बिहाइंड देम इज कॉमन। द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल इन विच एवरी सिटीजन कैन फाइंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
6: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
7: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीति जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जय भारती कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं परदेश फिल्म का गीत, हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति, शंकर महादेवन और आदित्य नारायण की आवाज में। संगीत नदीम श्रवण का है।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी है। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विपक्षी नेताओं ने भी आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच तथा कार्रवाई की मांग दोहरा रहे हैं। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगें स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। सदर अस्पताल में इलाजरत चार छात्रों के स्वास्थ्य की स्थिति स्थिर बताई गई है। चिकित्सकों के अनुसार उनमें हल्का इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन है जिसका उपचार किया जा रहा है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आंदोलन स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की और सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग दोहराई। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और कई विधायक नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में पहुंच गए। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। आंदोलन स्थल पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है और छात्र नेताओं ने कहा कि कोर कमेटी के साथ विचार विमर्श के बाद आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली में भाजपा सांसदों ने जेपीएससी मामले और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की अपील की। उपायुक्त ने ग्लोबल वार्मिंग और कम बारिश पर चिंता जताते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने पर जोर दिया।
2: आज वन महोत्सव में पूरी जिला की टीम ने शिरकत की और मैं डीएफओ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने कार्यक्रम करवाया और हम लोग को पेड़ लगाने का मौका दिया। मैं सभी कोडरमा जिलावासियों से यही अपील करता हूँ कि अपने घर में कम से कम एक एक पेड़ जरूर लगाएं और जो पुराने वृक्ष हैं उनको बचाने का भी कार्य करें।
0: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य में 15 अगस्त

तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए सिमडेगा और सिंहभूम सहित 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 14 अगस्त को रांची, खूंटी और लातेहार में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
0: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
2: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
0: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
2: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
0: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भू विज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
2: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्ही दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गयी कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
0: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30

0: डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ, उन्हें हमारा शत शत नमन।
1: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
0: जी।
1: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
0: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
1: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
0: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
1: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आज़ादी मिली।
0: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे
1: जी। और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है, राष्ट्रध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राष्ट्रध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
0: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
1: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली।

0: अरे दिलीप।
1: हाँ सुभाष।
0: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
1: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
0: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियां खाने का शौक है, मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
1: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
0: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
1: तो फिर?
0: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
1: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
0: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
1: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
2: Hey you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
0: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
2: Is that right? You black monkey?
1: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
2: बात जी बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
0: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
2: क्यों bloody rascal, you are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
0: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
2: तो क्या करेगा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? यू scoundrel, यू bloody swine, बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
0: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
2: ठीक है, आम टर्म को देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
0: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
3: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की। लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
0: सभी नेता पकड़े गए?
1: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
0: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
1: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
0: और अपने सुभाष बाबू?
1: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी, तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
4: कितनी सजा हुई?
0: नालायक कहीं के, सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
4: क्या हुआ सुभाष बाबू?
0: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त

0: की कोई मुर्गी छू।
1: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
2: कौन? शिशिर?
3: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ। दरवाजा खोलिए।
2: आओ अंदर आ जाओ। क्या खबर है?
3: सब तैयारी हो गई है। पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे। मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
2: ठीक है चलो, लेकिन मेरे ये कपड़े?
3: उसका भी प्रबंध हो गया है। आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
2: ठीक है।
3: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी। किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं है।
2: तो फिर ठीक है, आओ चले।
3: चलिए।

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्जुन मौलवी साहब।
1: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
1: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
3: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
1: अच्छा, खुदा हाफिज।
3: खुदा हाफिज साहब। लो भाई, यहाँ तक तो आसानी से आ गए, अब कल न जाने क्या हो।
1: ये अखबार कहाँ गए?
3: हाँ, ये रहा, कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
4: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया।
5: जय

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही है।
1: नहीं, नहीं, नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
2: मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए, ठहरिए, ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
3: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।
4: नहीं, नहीं, कागज

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानों उठो। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम रांची मेलोडीज़।

दोस्तों कहते हैं दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है और कुछ लोगों से मिलके ना जिंदगी बदल जाती है। तो चलिए आज का ये खूबसूरत सफर उन लोगों के नाम, उन रिश्तों के नाम जो दिल के बेहद करीब होते हैं। ये दूरियां भी क्या-क्या करा देती है, कोई याद बन जाता है तो कोई ख्वाब बन जाता है।

सांची मेलोडीज का ये सफर और भी खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आगे और भी है बेहतरीन गाने। कुछ रिश्ते बहुत अजीब होते हैं, ना नाम होते हैं ना कोई पहचान होती है, फिर भी हर पल हर घड़ी दिल के बहुत पास होते हैं, कभी मुस्कान बनकर तो कभी आंखों की नमी बनकर।

और आइए अब सुनते हैं बस एक पल फिल्म का गाना आतिफ असलम की आवाज में। ना कोई इशारा दिलासा ना वादा कोई, मगर जब भी आई शाम तेरा इंतजार करने लगे हम।

बारिश की हर बूंद बस मिट्टी को ही नहीं भिगोती, कुछ खामोश यादें भी दिल में फिर से जिंदा कर जाती है।

और आइए अब सुनते हैं तुम बिन फिल्म का गीत केएस चित्रा की आवाज में। फिर तेरी याद, फिर तेरी तलब, फिर तेरी ही बातें याद आने लगी। क्यों मेरे दिल को तेरे बिना सुकून नहीं आता।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। दिल्ली में भाजपा सांसदों ने झारखंड छात्र आंदोलन और जेपीएससी मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों ने संसद परिसर में मकर द्वार पर मार्च निकाला और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा ने झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राहुल गांधी और कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। रांची स्थित कांग्रेस भवन में आज गठबंधन सरकार के मंत्रियों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी मौजूद रहे। मंत्रियों ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने जेपीएससी छात्र आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और राजनीतिक लाभ के लिए गलत नैरेटिव सेट कर रही है। बोकारो जिला परिषद सभाकक्ष में आज ग्रामीण रोजगार आजीविका एवं विकसित भारत विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में के मंत्र के साथ जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। चतरा जिले में जल संरक्षण और सिंचाई विस्तार के लिए जिला भू संरक्षण विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर तालाबों का जीर्णोद्धार और डीप बोरिंग का कार्य कराया जा रहा है। इससे 1130 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई सुविधा बहाल हुई है और 3,500 से अधिक किसान सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। पाकुड़ के शहरी क्षेत्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक पुलिसकर्मी और व्यवसायी के घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के सोने के गहने और नकदी चुरा ली है। चोरों ने एक वकील के घर भी चोरी का प्रयास किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर सामने की जांच कर रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत पाकुड़ में स्कूली बच्चों ने एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में राष्ट्रध्वज थामे स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के नारों के साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बढ़ते कदम।